0: the system, but it's love for money.
1: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।
1: बाहर से कोई अंदर ना आ सके, अंदर से कोई बाहर ना जा सके।

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं.

0: फैंटास्टिक परफॉर्मेंस. हमारे दोस्त शंकर एहसान लॉय जिन्होंने ये कंपोज किया है, ये आपकी आवाज सुनते तो बहुत खुश हो जाते हैं, बहुत खुश हो जाते हैं. प्लीज इनके लिए वोट दीजिए बहुत सारे. थैंक यू.
1: मेरे लिए वोट करने के लिए टाइप कीजिए AMANAT अमानत और इसे भेज दीजिए 7575 पर. आप मुझे फोन भी कर सकते हैं 1904247575 13 पर. 13 मेरा कोड है. रिलायंस सब्सक्राइबर्स भी मुझे वोट कर सकते हैं 5123493 पर. थैंक यू.
2: सामेईन कराम, FM 92.9 पर हम रेडियो आपकी आवाज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं.

0: रास्ते भी अजनबी हैं, चेहरे भी अजनबी हैं, बेचारगी है हर तरफ, बेगानगी है। कल भी एक आरजू थी और आज भी एक आरजू है, काश कोई हम सफर मिल जाए।
1: कोई हम सफर नहीं है, कोई जाने जाने।
2: आवाज दिल की, म्यूजिक की, सोच की और आपकी, आपकी आवाज, आपकी आवाज।

FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है। FM 92.9 और केबल नेट 88.9 पर ये रेडियो आपकी आवाज है।

0: खुद सैदा हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए
0: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
1: बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा बुद्ध ने सब कलमा पढ़ा
0: काफिर मुसलमान हो गए
1: जग में जब आए मोहम्मद इस्लाम जिंदा हो गए जग में जब आए मोहम्मद

तो हम औरतों में बैठे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन क्या हम ये लिबास सिर्फ औरतों में पहनते हैं या बाहर भी जहाँ आदमी होते हैं, सड़क वगैरह, गाड़ी में, वैन में, ड्राइवर दूसरे तीसरे उनके सामने भी? और फिर तीसरी चीज ये कि इस्लाम की रूह से ना पूछिए ना बताइए, सिर्फ फितरत के एतबार से पूछिए कि घुटनों से ऊपर का हिस्सा जो है ना, ये खास तौर पर काबिले शर्म है ना, जिसको रान बोलते हैं, ऊपर का हिस्सा, टांग के ऊपर का हिस्सा जो, आप देखिए कि क्या ये औरतों को भी दिखाना चाहिए? नहीं, औरतों को भी नहीं दिखा सकते। पिंडलियों की हद तक खैर है, लेकिन घुटना में नी, जो नीज है आपके, इससे ऊपर औरत भी नहीं देख सकती। इसी तरह पेट, कमर, ये हिस्से, तो आप अपनी अपनी लिबास को चेक करें कि क्या आपके बैठने के अंदाज से, क्योंकि मैं जब यहाँ से पढ़ा रही होती हूँ ना, बाज़ुकत मेरी नजर पड़ जाती है और पढ़ाना मेरे लिए मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैंने इतने दिन इसलिए खामोशी इख्तियार की कि मेरा हुक्म आप क्यों माने, मैं आप पे दारोगा नहीं बना के भेजी गई। मुअल्लिम तो हो सकती हूँ लेकिन दारोगा नहीं, पुलिसमैन का किरदार नहीं। जो अल्लाह से ना डरे वो मुझसे क्या डरेगा? अगर मुझसे डरे भी तो आपको तो कोई फायदा ही नहीं, कोई सवाब ही नहीं। सवाब तो अल्लाह से डरने का होगा, कितना कपड़ा लग जाएगा या क्या ऐसा मटेरियल अवेलेबल नहीं, अगर नहीं तो अवेलेबल कर लेना चाहिए या उसके ऊपर कुछ और पहन लेना चाहिए जिससे वो ढक जाए। क्योंकि बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, सिन्फान मिन अहले नार लम अराहुमा, आग में जाने वालों के दो ग्रोह जिन्हें मैंने नहीं देखा। एक ग्रोह उनमें से मर्दों के बारे में है, जालिम हुक्मरानों के बारे में है, और दूसरा औरतों के बारे में है। हदीस के अल्फाज हैं, ये मेरे अल्फाज नहीं कि मत सोचे कि आप ये कैसी बातें कर रही हैं और हमको ये डरा रही हैं और ये कह रही हूँ। मैं तो कोई हैसियत नहीं रखती कि आपको कुछ भी कहूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज हैं, और जो आप पर ईमान लाता है आपकी बात को भी उसे मानना चाहिए, वरना तो मानने का कोई मकसद नहीं। और अगर हम चाहते हैं कि क़यामत के दिन आप हमारी शफ़ात कराएं, आप हमें हौज़े कौसर से पानी पिलाएं, हशर के मैदान में जहां इतनी गर्मी होगी कि हर शख्स, हदीस में आता हर शख्स अक्ष अक्ष प्यास प्यास की रट लगाए हुए होगा, एक हर शख्स पसीने में डूबा हुआ होगा, जिसकी थोड़ी सी झलक आपको हल्की सी, इससे 70 गुना 70 डिग्री टेम्परेचर ज्यादा कह लें, सूरज करीब होगा, कोई छत साया भी ना होगा सिवाय रहमान के अर्श के साये के, कि जिसके नीचे मखसूस लोग जा सकेंगे, हर एक नहीं पहुंच सकेगा वहां। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को हौज़े कौसर से पानी पिलाएंगे, और जिसको एक दफा पिलाएंगे दूसरी दफा उसको प्यास ना लगेगी। हम अपने इस लिबास में आपके सामने जा सकते हैं? मसलन सोचिए कि जैसे तसव्वुर में लाइए कि नीचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ रखते हैं और आप लिफ्ट से उतरे हैं, सीढ़ियों से उतरे हैं, और आगे आपकी मुलाकात हो जाती है उनसे, फेस कर सकते हैं उनको, तो वहां उनसे हौज़े कौसर से पानी लेके कैसे पिएंगे अगर ऐसे अमल हुए? आपने फरमाया निसा उन कासियात उन आरियात उन, निसा उन औरतें, कासियात उन लिबास पहने हुए, कासिया किस्वा से है, कासियात उन आरियात उन, आरिया औरत से, आरिया नंगी उरियानी से, ऐसी औरतें जो लिबास पहन कर भी नंगी होंगी, ऑब्वियसली यानी जिस्म उसमें से झलक रहा होगा, निसा उन कासियातुन आरियातुन रुऊसुहुन्ना का अस्मिनतिल बुख्त, उनके सर ऊंट की कोहान की तरह ऊंचे उठे हुए होंगे, हेयर स्टाइल की तरफ इशारा है कि उनके सर ऊंचे उठे हुए होंगे, किस तरह जैसे ऊंट की कोहान उठी हुई होती, कोहान उसकी हमको कहते हैं ना, आज उभरा हुआ हिस्सा है,